0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhanda Radio ITN.
1: सुबह संध्या का खबर सहतरा ही बिना निभाए।

संस्कृति जन किरुल हदवत रातरा ज्योति असम सम हेंगुम प्रकाशनय लखन हेंगुम वरुसाव जूली 11 वन सेनसुरादा रात्रि 7